सहस पद बिमल नानक पद गंध बिन सहस पद गंध विचलत मोही सब में जोत जोत है सोई इसदा चानन सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै स्वार्थी होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंजनम

उपवासितक संबंधी नूर वर्षह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी

मन सोर जोर न सुरती, ज्ञान विचार जोर न जुक्ति, छुटा है संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीत ना कोए। राती रुती थिती वार, पवन पाणी अग्नि पाताल, तस्वीर धरती था।

न ठगे जावे। जिनकै राम सहमन माहि तथै भगतो सह के लोह करह आनंद सच्चा मन सोई सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नर नियार तथा खंड मंडल वर्पण जी को कथा।

जात पावहा राती जो सुनियार वैरन मत वेद हथियार पाव खलागन तपताऊ पांडा पाव अमृत तटाल कड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनका नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक

ਨਮਸਤਸਤਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਰ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰ ਨਮੋ ਸਰਬਤੰ ਦੇ ਨਮੋਸਤ ਅਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਹੀਂ ਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤਰਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬਪੋਖੰ ਨਮ
त्वय प्रसाद। अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, अलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अते है, अपे है, अजीत है, अपीत है, त्रमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अजंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है।

तंत्रं नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टेष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता अधो अर्ध अर्धं अगं उघारता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदीय भेदीय नाम अकामं समस्त पराजी समस्तस्तम तेरा जोर चाचरी शानदन जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं आजू हैं आदेश हैं अपेस हैं पुजंग पर्यात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समस्त निदान नमस्वंग नृनाथे नमस्वंग प्रमाथे नमस्वंग अगंजे नमस्वंग अपंजे नमस्वंग अकाले नमस्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वे से नमो राज राजे नमो साजे नमो साहे नमो माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीत नमो सर्व प्रीत नमो सर्व ज्ञान नमो परमतान नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगी त्रिपंगी अनंगी नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांद त्वय प्रसाद अमृत कर्म अमृत धर्म अखल जोगे चल भोगे चल राज अटल साजे अखल धर्म अलख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग याता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुक्ता सर्वंग मुक्ता सर्वंग देव सर्वंग पेवं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जोगता सर्वंग देव सर्वंग पेवं सर्वंग काले

सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्म सर्वं तर्म सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता प्रसावलशन त्वय प्रसाद। नमो नरक नाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्रेण पुत्रेण शत्रेण मित्रेण तातेन मातेन जातेन पातेन शाकं सुलीकया मितो अमीक सदैवं प्रवाहे।

करुणा लय है और काले हैं, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सब उबारण है, त्रित के तन है, जाके कर्ण है, मनमानी है, जग जानी है, सर्वं पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है, करुणा कर है,

नृपनायक हैं, सर्पायक हैं, पापंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जपजापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद नमो।

गुरु गरीब निवास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सवैये श्राव शुद्ध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार मन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारी देख को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के ही श्री भगवान की पाए कृपा होते। एक रत्ती मिनु एक रत्ती के मत मतंग निरेंजर संग अनूप उतंग सुरंग सवारी कोट तुरंग कुरंग से कूद पाउन के गाउन कौ जात निवारी। भारी पुजान के भूपली बेधन आवत शीस न जात बेचारे ते पै दो कहां पै भूपत अंत कौ न गेहि पाए पदारे। जीत फरै सब देश दसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भविख भगवान की भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे। श्री पत श्री

ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि उबाच बेनती चौपाई।

हमरी दुष्ट सब तुम कावहु आप हाद है मोहे बचावह सुखी बस है मोरू परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिय सब कौआ संघर्य पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा।

जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तरतब देह अपारा जब अकर्क करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तहरा आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम।

कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिंह भयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंप होया अनुवास रूप स्वयंप। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिख्य संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो ऋण काता। जे अस तो तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे, पुरख जमन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सवटारे। जो कल को एक बार

कृपा दृष्ट तन जाहिने हरि हो ताके ताप तनक महे हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुच्छा श्वस कै न कोई।

संबत सत्रह सहस पणिजय अर्थ सहस पुंतीन कहित जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

उतरे सगल विसुरे दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन भए सरसे पूरे गुरते जानी।

0: आओ गुरु के प्यारियो सारी संगत एक जुबान होके हाजरी लवाओ, कोई भी रसना बांधी ना जावे, आखो गज वज के जी वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।
0: जेड़े रब दे प्यारे ने ना, जिन्हां ने आके समाज दे विच कुछ करके विखाया, आ मनुखता नू सिद्धे रास्ते पाया, गुरु दे नाल जोड़िया, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे नाल, ओ गुरु के प्यारियो उन्हां तों आपां सदके जाइए बलहारे जाइए। जिंदगी सफल करे सेवा साधु संतां दी, प्रेम दी रंगण विच मना ताई रंग दी, तार ते हजारां पापी साधु महापुरखां ने ताइयों त्रिलोकी धूड़ साधुआं दी मंग दी, होमे नू मटाउंदे झेड़े दूई दे मकाउंदे सारे, सिख्या सुणाउंदे उच्चे जीवन दे ढंग दी, जस बलवंत गावे रब दे प्यारियां दा, अपर अपार महिमा साधुआं दी संगत दी, उन्हां दी महिमा ही अपर अपार है। जन्म मरन के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेश। आ जन्म मरण दा गेड़ खत्म हो जांदा है जे उस गुरु दे नाल जुड़िया होया कोई रब दा प्यारा, गुरु के प्यारे उहदा संग हो जांदे, ये जन्म मरण दे गेड़ तों आपां मुक्त हो जांदे आ। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गहना। असी उन्हां रब दे प्यारियां दी चरणां दी धूड़ मंगदे आ, असी उन्हां दी शरण मंगदे आ, फिर वेखो सानू मिलदा की है, तान सानू बल मिलदा है, सानू ताकत मिलदी है, शक्ति मिलदी है। ओ शक्ति इत्थे गहने दा अर्थ है जिहड़ी साडे शरीर नूं सुंदर बनाउंदी है, सुंदर बनाउंदी है। ये रब दे प्यारियां दी उस्तत है, ये उन्हां प्यारियां दे गुरु के प्यारियों जस दे विच सतगुरु महाराज जी दे शब्द बोल ने, ते गुरु महाराज जी ने कृपा बख्शिश कीती है। सतगुरु महाराज जी दी ऐसी कृपा, ऐसी गुरु के प्यारियो, बाबा फरीद जी दे ये दिन लंघ के गए ने, 23 सितंबर नूं फरीदकोट दी धरती ते उन्हां दी याद दे विच समागम कीते जांदे ने। उन्हां पास एक रब दा प्यारा आया, उन्हें सोने दी कैंची धरी, ते कैंची धर के ओ जदों सामने बैठिया बाबा जी दी, बाबा फरीद जी कहिंदे प्यारिया सानू इहदी लोड़ ही नहीं, साडा इह काम ही नहीं, इहनू चुक लै। ओ आपदे जाणी बई कीमती आ सोने दी, इह बाबा जी बहुत खुश होणगे, पर बाबा जी कहिंदे साडा तां धंधा ही नहीं, असीं कैंची तों की कराउणा है, तूं इहनू चुक के लै जा, साडा इह काम नहीं। कैंची दा काम हुंदा कट्टणा, कट्टना कैंची का काम ही, साडा काम कट्टना थोड़ी ही, साडा तां काम जोड़ना है। उहदे साडे पास लैके आउणा सूई ते धागे नूं लैके आ, कैंची कटदी है, कैंची की जिंदगी ते दाग ही, पर सूई है जिहड़ी उहदी जिंदगी ते कोई धब्बा दाग नहीं, वह जोड़दी। रब दे प्यारे जिहड़े हुए ने उन्होंने जोड़िया है, उन्होंने तोड़िया नहीं। अज तोड़न वाले तां बहुत ने, थां थां ते डेरे ने, अपने आप नूं कहिंदे आ वी साडे अगे मत्थे टेको। मैं पिछले एतवार भी ये गल कीती सी, साडा दुखांत ही आ कौम दा, जदों कौम ते भीड़ पैंदी ए, ये डेरेदार जिन्ने भी ने, ये कदे भी आके कौम दे हक दे विच नहीं खलोंदे। तुसीं इतिहास वेख लो मगर झाती मार के, आ हुण ताज़ा इतिहास ही आ ना 10 सालां दा जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी हुई, बिगराड़ी मोर्चा लग्गिया, उदों तों ही देख लो किन्ने के आए मैदान दे विच, किन्ने क कौम के हक के आवाज बुलंद की, ये कर ही नहीं सकते क्योंकि स्टेट इन्हों चला रहा है, वह जिमें इशारे करता ये उस तरह करे। कौम के हक के कोई विरले विरले बोलते, जोड़े बोलते आ फिर सरकार एडिया जालम हो जाए, उन्होंने डिब्रूगढ़ जेल के सुट दें। भाई अमृतपाल नाली मैंबर पार्लीमेंट आ, एम पी आ, पिछे पिछले दिनों के कृष्णा नगर तो महुआ महोत्रे जिहड़ी सी वह बोली, उन्हें एको ही गल आखी, कहिंदी इह सब तो वड्डा लोकतंत्र दा घाण, सब तो वड्डा लोगों ने जताया उन्हूं 4 लाख तो वध वोटां पा के, पर तुसीं उन्हूं जेल दे विच रखिया होया है। ते गुरु के प्यारियो ये विरले विरले, आओ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਪਮਾਲ ਦਾ ਗਾ ਕੇ

दुख जमनसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुष्मन टरै। प्रभ सिमरत कज बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अंधिन जागै, प्रभ कै सिमरन पौ न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साथ कै संग श्रम निधान।

बुझाए प्रभु के सिमरन सब की सुझाए। प्रभु के सिमरन नाई जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूरण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए। अमृत नाम हृदमाय समाय, प्रभु जी बसे साथ की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन प्रवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे पाक, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबो ना झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बाणी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन ने चलासन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अन चुनकार सुख, प्रभु सिमरन कांत ना पार। सिमरै से जन जिन को प्रमया, नानक तिन जन शरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पय से जति दाते, हर सिमरन नी चौकुण जाते, हर सिमरन तारी सब तरणा, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन क्यो सगलाकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिम

तै नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की वर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम, दास की ओटर कै नाम, उदरै जन कोट, हर जस करत संदिन।

मिटै बिमाना आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते ऊंचा जा का मनो ए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देख सगल शेष साजना सोग दुख जन समिष्ठिता ना।

नस को सर्वत्र मैं श्रेष्ठ रम हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सास संग दुर्मंद मलेरिया सगल उद्दम मैं उद्दम पलार का नाम जपो जी सदा सगल बाणी मैं अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बकानी

जिनके आतिस चीत रख नानक निभे नाल अष्टपदी रमैया के गुणचेत पराने कवन मोलते कवन दिष्टाने जिन्तु सास सवार सिगारिया गर बगन मै जिनै उबारिया बार व्यवस्था तुझै प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सोध बिरत पयाओ पर साख सैन मुक पयाओ बैठ को दैन निर्गुण गुण कछु ना बूझै बख्श लियो तो नानक सी जै जे प्रसाद तरु पर सुख वसै सोत पर आदमी बनता संगत सह जे प्रसाद पी वै शीतल जला सुखदाई पौन पावक मूला जे प्रसाद पोगै सब रसा सगल समग्री संसाद बसा दीने अस्त पाव करण नेत्रसना तिसै त्याग वर संग रचना ऐसे दो

या कौड़ी संग रचै सा छोट छूट संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमान है जो वन सो दूर पराण है छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन ले उतारे तो एक गर्द प्रीत पसम संग होए अंत कूप में।

अष्टपदी दस वस्तु लय पाछ पावे एक बस कारण भी कोट गवावे एक पी ना दे दस पी हिड़े तो मूड़ा कौका करे जिष्ठा कुर सो नाई चारा ताकू की जय सद नमस्कारा।

हस्ती असुभस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेकस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या पशु पर करत गुमान अस्थिर भगत सात की शरण नानक जब जब जीव अर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुनय मिथ्यास्पद रब को हिराय मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रिया रूपाद मिथ्या रसना पोजन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार कोतावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं प्रोपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन भूजे मिथ्या सपे सफल।

ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरता ब्याय मेघ बिना जो के ती जाए गोविंद भजन बिन बिरते सब काम ज्यो कृपन के निरारत दाम तान तान ते जन जे कट बस्यो नाव नानक ता कह बल बल जाओ रहत वर कचवर कमात मन प्रीत मुखो गंडलाव जान नार प्रभु पर बीन बार पेक ना काऊ पीन अवर उपदेश है आप न करै आवत जावत जन मैं मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सिक तरह संस

जे प्रसाद आरो कंचन दे लिव लाओ तिस राम सने जे प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कै जे प्रसाद तेरे सगल चित्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझ को ना पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे जे प्रसाद पाए दुलभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद आपूकन पैरी जय मन तिस सिमरत को आलस की जय जे प्रसाद आश्वहस्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत्य सत्याय तिसत्याय जो एक अलख है या उमा नानक तेरी रख है जे प्रसाद करै पुन बोदान मनाट पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहार तिस प्रभ को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निक्की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनै करना जे प्रसाद पे कह विस्मार जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुसै जे बसना जे प्रसाद अस कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण पलै जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुसै समावै सा प्रभ त्याग वरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मोड़ तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसै जान मन सदा जूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू तास्योरा जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गवाए स्वर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रकाश प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो

ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता सात जना की अचरज कथा अष्टपदी सात कै संग मुको जलो सात संग मल सगली खो सात कै संग मिटै विमान सात कै संग प्रगटे सुज्ञान सात कै संग बूझै प्रभ नेरा सात संग सबोत निबेरा सात कै संग पाए नाम रतन सात कै संग एक उपर जतन सात की महिमा बनै गौण प्राणी नानक सात की शोभा ब्रह्माय समानी सात कै संग गोचर मिलै सात कै संग सदा पर फुलै सात कै संग आवै बस पंचा सात संग अमृत रस पंचा सात संग होए सब की रेन सात कै संग मनोहर बैन सात कै संग नाकत उतावै सात संग अस्थिर मन पावै सात

साथ कै संग कलु कतर है, साथ कै संग नरक पर हर है, साथ कै संग आऊ आसुएला, साथ संग बिचर धर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साथ कै संग ना बिरता जावे। पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उदरै, साथ सुन रसै, साथ कै संग सुनर नाओ, साथ संग नर के गुण गाओ, साथ कै संग ना मन ते बिसरै, साथ संग सरपण निस्तरै, साथ कै संग लगै प्रमिठा, साधु कै संग कट कट डिठा।

ब्रह्म ज्ञानी सकल की नातम रस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ह ब्रह्म ज्ञानी की सब परमया ब्रह्म ज्ञानी ते कज बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदसी ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जायद आखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।

प्रश्न प्रस मन में प्रीत निरंजन द्रस प्रतिरूप नापेख नेत्र साधु टहल संत संग हेत करन ने सुने काहु की निंदा सब ते जाने अपसको मंदा गुरु प्रसाद बिख्या पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्रिय जीत पंच दुख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा प्रस वैष्णो सो जिस ऊपर सुपरसन बिसन की माया ते हुई भिन्न करम करवत ने करम तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काउ फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ नाम जपावे नानो को वैष्णो परमगत पावे भगोती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगोती कीमत उत्तम होवे भगवंत की टहल कर नित मन तनर पै बिशन प्रीत हर के चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगोती भगवंत को पावे सो पंडित जवन प्रबोधे राम नाम मातम में सोदे राम नाम सारस पिय उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नावे वेद पुराण सिमरत बुझे मूल सुकम में जाने स्थूल जो वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जो वरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसके गत होए साध संग पावे जन कोय कर कृपा अंतर उतारे पस प्रेत मुगत पात्र को तारे सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहो जुगत किते ना पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसन तन पाए दिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोझी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुकत सो कहावे तैसा हरक तैसा उस सोग तैसा सदा अनंत तह नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख अजय मन।

पसरियो आप होए अनंत तरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। जैसे मध्य तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल। श्लोक उस्तत करह नेक जन अंतना पारावार, नानक रचना पर रची बहुविध अनेक प्रकार राष्ट्रपति। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमहदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सर होते, कई

नानक सब किछ प्रभु कह हाते, कहीं कोट पहे बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कहीं कोट प्रभु को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहनते। कहीं कोट दर्शन प्रभु प्यास, तिन को मिलियो प्रभु अविनाश। कहीं कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको होए आप सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन। कहीं कोट खाणी अरखंड, कहीं कोट आकाश ब्रह्मंड। कहीं कोट होए अवतार, कहीं जुगत किनो विस्तार।

अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत नामृत एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जलाए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना।

मन में आप मन अपने माहे, नान की मत कहना जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने बख्याने। सच सच सत सब की ना कोट में देखने विलचना। पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बख्यानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। सलोक संत शरण जो जन पर सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार राष्ट्रपति। संत कै दुखन आरजा कटै संत संत कै दुखन जमते ने छूटै। संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मह पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन। संत कै ते को रखै न कोय संत कै दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतरै। संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किन माए। संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै संत कै दुखन सब कोछ लै। संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच नचाए। संत दोखी का थाव को नाहे नानक संत पावै ताव विगत पाए। संत का निंदक मात ताई संत का निंदक खिन टिक न पाई। संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राजते हीन संत का निंदक दुखियार देन। संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग।

साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का है सुहाओ। आठ पहर प्रभ पेखो नेरा, मिटे अज्ञान विनसया देरा।

संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ जीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एकस घट माहे।